खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: This is Sunrise Retro.
1: London का Retro Asian Mix Sunrise Retro को सुनने के लिए शुक्रिया. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 AM इन लंदन, नेशन वाइड ऑन DAB, दुनिया भर में वाया sunriseradio.com, फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स. कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 02085747777. Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

0: This is Sunrise Retro.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travelers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravelers.notjusttravel.com and quote Sunrise Retro when you inquire. Global Travelers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Koppa Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Koppa Ceylon brings the flavors of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at koppaceylon.com. Koppa Ceylon, come home to Sri Lanka.
3: Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है, इसी का कल्प

0: Sunrise Retro.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travellers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravellers.notjusttravel.com and quote Sunrise Retro when you inquire. Global Travellers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
3: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
4: Ye hai Sunrise Retro.

0: सनराइज रेट्रो लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travelers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravelers.notjusttravel.com and quote Sunrise Retro when you inquire. Global Travelers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
3: Need anything from Tesco? How about hundreds of the Tesco products you know and love, price matched to Aldi? Helping you bag more of our fresh essentials and cupboard staples. So, next time you pop in store or shop online with us, just look out for the Aldi Price Match logo. Tesco. Every little helps. Comparable product prices checked twice weekly pro rata, varies by store, selected products matched in express, excludes promotions, Northern Ireland and Wash. See tesco.com/aldi price match.
0: London ka retro Asian mix Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. Hamare sister station Sunrise Radio ko sunna mat bhuliyega on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, duniya bhar mein via sunriseradio.com, free Sunrise Radio app par ya phir apne home smart speakers ya radio player and nation player app par.
4: London's Retro Asian Mix Sunrise Retro.

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिंस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: This is Sunrise Retro.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavors of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
3: Not only is Aldi's Almat Bio Washing Powder approved by Good Housekeeping for 2 years running, it's also just £3.89. That's less than half the price compared to Ariel Washing Powder from Tesco at £10. So go on, give Aldi a spin. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
4: Ye hai Sunrise Retro.
0: Back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.

0: Sunrise Retro, London का Retro Asian Mix.
1: Every great story begins with one journey. Some become adventures, some become love stories, some begin with a sunrise you never forget. At Global Travelers, we create luxury holidays, destination weddings and honeymoons designed around your story. Visit globaltravelers.notjusttravel.com and quote Sunrise Retro when you inquire. Global Travelers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavors of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
0: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
3: London's Retro Asian Mix. Sunrise Retro.

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: This is Sunrise Retro.
2: Attention!
3: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Bilimoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Bilimoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Thank you for tuning into Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to tune into our sister station, Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Nationwide on DAB, on the free Sunrise Radio app and online at sunriseradio.com. Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

जाकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर, आकर जाकर

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro London के Retro Asian Mix को सुनने के लिए शुक्रिया. याद रखिएगा, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज हिट्स को भी आप सुन सकते हैं. द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स नेशन वाइड ऑन DAB, ऑन द फ्री सनराइज रेडियो ऐप और ऑनलाइन sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स. कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777.
2: ये है सनराइज रेट्रो.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।